0: और हमने मूसा की मां की तरफ वही भेजी कि उसको दूध पिलाओ, जब तुमको उसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और ना तो खौफ करना और ना रंज करना, हम उसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और फिर उसे पैगंबर बना देंगे।
1: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا

और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।

0: तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साये की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूँ कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए।
1: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء

أجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق

0: उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं अपनी इन दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता, तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे।
1: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل।
0: मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जौन सी मुद्दत चाहूँ पूरी कर दूँ, फिर मुझ पर कोई ज्यादती न हो, और हम जो मुआहदा करते हैं खुदा उसका गवाह है।
1: फलम

और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे आमाल और तुमको तुम्हारे आमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों के खासगार नहीं हैं।

0: और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने उनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी, जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं, और ये रिस्क हमारी तरफ से है लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते।
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا

0: और जो चीज तुमको दी गई है वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और उसकी जीनत है, और जो खुदा के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाली है। क्या तुम समझते नहीं?
1: अफमन वअदनाहु

और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे सुबह को कहने लगे, हाय शामत, खुदा ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर खुदा हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। हाय खराबी, काफिर नजात नहीं पा सकते।

क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो ख्याल ये करते हैं बुरा है।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। इसी गजवे के ताल्लुक से सूरह अनफाल नाजिल हुई, जो दर हकीकत इस गजवे पर एक खुदाई तबसरा है। अगर ये ताबीर सही हो और ये तबसरा बादशाहों और कमांडरों वगैरह के फातिहाना तबसरों से बिल्कुल ही जुदा गाना है। इस तबसरे की चंद बातें मुख्तसरन ये हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुसलमानों की नज़र उन कोताहियों और इखलाकी कमजोरियों की तरफ मबजूल कराई जो उनकी फिल जुमला बाकी रह गई थी और जिनमें से बाज का इजहार इस मौके पर हो गया था। इस तवज्जो दहानी का मकसूद ये था कि मुसलमान अपने आप को इन कमजोरियों से पाक साफ करके कामिल तरीन बन जाएं। इसके बाद इस फतह में अल्लाह ताला की जो ताईद और गैबी मदद शामिल थी उसका जिक्र फरमाया। इसका मकसूद ये था कि मुसलमान अपनी शुजात और बसालत के फरेब में ना आ जाएं, जिसके नतीजे में मिजाज और तबा पर गुरूर और तकबर का तसल्लुत हो जाता है। बिल्कुल वो अल्लाह ताला पर तवक्कल करें और उसके और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इताअत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इताअत में रहें। फिर उन बुलंद अगराज़ो मकासद का तस्करा किया गया जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस खौफनाक और खूनरेज मार्के में कदम रखा था और इसी जमन में इन इखलाक और साफ की निशानदेही की गई जो मार्कों में फतह का सबब बनते हैं। फिर मुशरिकीन और मुनाफिकीन को और यहूद और जंगी कैदियों को मुखातिब करके फसीह व बलीग नसीहत फरमाई गई ताकि वो हक के सामने झुक जाएं और उसके पाबंद बन जाएं। उसके बाद मुसलमानों को माल गनीमत के मामले में मुखातिब करते हुए उन्हें इस मसले के तमाम बुनियादी कवायद उसूल समझाए और बताए गए हैं। फिर इस मरहले पर इस्लामी दावत को जंगो सुलह के जिन कवानीन की जरूरत थी उनकी तौज़ीह और मशरूयत है ताकि मुसलमानों की जंग और अहले जाहिलियत की जंग में इम्तियाज कायम हो जाए और इखलाक और किरदार के मैदान में मुसलमानों को बढ़तरी हासिल रहे और दुनिया अच्छी तरह जान ले कि इस्लाम महज एक नजरिया नहीं है बल्कि वो जिन उसूलों और जाब्तों का दाई है उनके मुताबिक अपने मानने वालों को अमली तरबियत भी करता है। फिर इस्लामी हुकूमत के कवानीन की कई दफात बयान की गई है जिनसे वाजे होता है कि इस्लामी हुकूमत के दायरे में बसने वाले मुसलमानों और इस दायरे से बाहर रहने वाले मुसलमानों में क्या फर्क है। 6 हिजरी में रमजान का रोजा और सदका फितर फर्ज किया गया और जकात के मुख्तलिफ निसाबों की तफसीलन तायुन किया गया। सदका फितर की फर्जियत और जकात के निसाब की तायुन से इस बोझ और मुशक्कत में बड़ी कमी आ गई जिससे फुकरा मुहाजरीन की एक बड़ी तादाद दो चार थी क्योंकि वो तलबे रिजक के लिए जमीन में दौड़ धूप के इम्कानात से महरूम थे। फिर नहायत नफीस मौका और खुशगवार इत्तफाक ये था कि मुसलमानों ने अपनी जिंदगी में पहली ईद जो मनाई वो शवाल 6 की ईद थी जो जंगे बदर की फतेह मुबीन के बाद पेश आई। कितनी खुशगवार थी ये ईद सईद जिसकी सआदत अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सर पर फतह और इज्जत का ताज रखने के बाद अता फरमाई और कितना ईमान अफरोज था इस नमाज़े ईद का मंजर जिसे मुसलमानों ने अपने घरों से निकलकर तकबीर और तौहीद और तमहीद और तस्बीह की आवाज़ें बुलंद करते हुए मैदान में जाकर अदा किया था। उस वक्त हालत ये थी कि मुसलमानों के दिल अल्लाह की दी हुई नेमतों और उसकी की हुई ताईद के सबब उसकी रहमत और रिजवान के शौक से लबरेज और उसकी तरफ रगबत के जज्बात से मामूर थे और उनकी पेशानियां उसके शुक्र की अदायगी के लिए झुकी हुई थी। अल्लाह ताला ने इस नेमत का जिक्र इस आयत में फरमाया है और याद करो जब तुम थोड़े थे जमीन में कमजोर बना कर रखे गए थे, डरते थे कि लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे, बस उसने तुम्हें ठिकाना रहमत फरमाया और अपनी मदद के जरिए तुम्हारी ताईद की और तुम्हें पाकीजा चीजों से रोजी दी ताकि तुम लोग उसका शुक्र अदा करो। बदर के वाके के बाद जंगी सरगर्मियां। बदर का मार्का मुसलमानों और मुशरिकीन का सबसे पहला मुसल्लह टकराव और फैसला कुन मार्का था जिसमें मुसलमानों को फतह मुबीन हासिल हुई और सारे अरब ने इसका मुशाहिदा किया। इस मार्के के नताइज से सबसे ज्यादा वही लोग दिल गिरफ्ता थे जिन्हें बराह रास्त ये नुकसान अजीम बर्दाश्त करना पड़ा था, यानी मुशरिकीन या वो लोग जो मुसलमानों के गलबा और सरबुलंदी को अपने मजहबी اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا مارکا سر کیا تھا، یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنج و علم سے جل بھن رہے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دنوں گروہوں کے ہمراز اور مساز تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے۔ انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی کل کو اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں، سیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کی اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھی، گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہو، اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی مارکہ آرائی کے لیے مدینے کی چار دیواریوں تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہیں اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی۔ ہم ان تمام منصوبوں کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر اختتام پذیر کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے۔
2: علیک یا سیدی،
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
2: سید الاولین والآخرین۔
0: FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: क्योंकि पीकिंग यूनिवर्सिटी से और वहाँ पे बहुत हाई टेक लैब्स थी, लेकिन यूसीपी में आके आई वॉज सरप्राइज कि यहाँ पे भी कोई जो लैब है वो किसी से कम नहीं है। रिसेंटली हमने, क्योंकि मेरा पीएचडी का काम जो था वो कैंसर सेल्स पे था, तो हमने रिसेंटली यूसीपी में भी कैंसर सेल एंड टिश्यू कल्चर लैब इस्टेब्लिश की है, जिसमें हमारे पास जो जितने भी इक्विपमेंट सेल्स को ग्रो करने के लिए या उनको सर्वाइव कराने के लिए ज़रूरी हैं वो उसमें मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर है, इसके अलावा बायोसेफ्टी कैबिनेट्स हैं टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स और द रिसर्चर्स। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ हाईलाइट करूँगी कि हमारी जो लैब्स हैं वो WHO का जो बायो रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसके साथ लिंक हैं और उनके कॉन्टीन्यूस विजिट होते हैं जस्ट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अवर लैब्स।
1: वेरी वेल सेड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। नाउ आई एम अगेन यू नो डायरेक्टिंग माय क्वेश्चन एट डॉक्टर अस्मा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि उस्ताद का बड़ा एक मकाम होता है, तो आप बताएंगी आपका जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है और टीचिंग मेथोडोलॉजी वो क्या है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हमतन गोश होके आपको सुनते रहते हैं?
2: जी सर, हमारे जो है एक टिपिकल जो एक एनवायरनमेंट होता है टीचिंग मेथोडोलॉजीज का, उससे हट के हमारे थोड़ा सा एक हम लोग अडॉप्ट करते हैं एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग बेसिकली एक मॉडल जो है उसको अडॉप्ट करते हैं विच इज़ आउटकम बेस्ड स्टडीज़ मॉडल, जिसमें हम स्टूडेंट्स की ना कि सिर्फ वो एक लर्निंग के ऊपर हम उसकी फोकस करते हैं, बल्कि ये स्किल्स की जो डेवलपमेंट है, इसके अलावा उनके जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करते हैं। तो इसमें डिफरेंट तरह की हम स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं टू अडॉप्ट दैट मॉडल, जिसमें फर्दर हम उसको बता सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक केस को सॉल्व करना है। केस बता दिया जाता है, साथ में हम उनको कुछ इस तरह के हैंड्स ऑन दे देते हैं, स्टूडेंट पहले से उसकी प्रैक्टिस करके आते हैं, देन वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम एंड देन वी आस्क स्टूडेंट्स टू अप्लाई द नॉलेज ऑन दैट केस।
1: वेरी नाइस। मिस हमारा, वुड यू लाइक टू ऐड टू व्हाट हैज बीन सेड बाय डॉक्टर अस्मा?
3: जी सर। अच्छा सर, मेरा तो बिल्कुल यही मानना है जैसे आपने कहा कि ये जो टीचिंग है ना, ये तो सर पैगंबरी है, मतलब उसका जो उसके जैसी ही है, यानी यही तो हम काम कर रहे हैं। तो सर, हम अपने स्टूडेंट्स की मोरल वैल्यूज़ उनको भी इन्हांस करने पे बड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि सर इखलाकियात जो है वो आपकी इस करेक्टर बिल्डिंग में बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। अच्छा सर, उसमें ये है कि क्लास में एज़ वन ऑफ द लीडिंग डिपार्टमेंट हमारे स्टूडेंट स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा होती है क्लास में, कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, कुछ ज़रा मासूम से भी होते हैं, तो टीचर का काम सर सारे बच्चों को इकट्ठा लेकर चलना है। तो उसमें ये है कि बस कुछ ज़रा शरारती बच्चों को थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे अभी हमने एसटीजी बेस्ड एक्टिविटी बच्चों की बहुत अच्छी करवाई, उनके चार्ट्स वगैरह बना के उनकी पिक्चर्स वगैरह ली और उन्होंने लर्न भी कर लिया और उन्हें लगा कि हम पढ़ भी रहे हैं और हम इन्जॉय भी कर रहे हैं। हम सर उनके फूड बायोटेक्नोलॉजी में उनसे प्रोडक्ट्स बनवाते हैं और उसके बाद हम उनको सेल करने की कोशिश करते हैं, और हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी में हम बच्चों से कहते हैं कि हॉस्पिटल्स विजिट करें, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स को इंगेज करने की और उनको डिफरेंट एनजीओज के साथ भी लिंक करने की कोशिश करते हैं। सर्टिफिकेट्स वगैरह बच्चों को कहते हैं कि आप किसी अच्छे अच्छे इदारों के, और फ्रीली अवेलेबल बहुत सर्टिफिकेशन होती हैं, तो हम बच्चों को इस तरह की चीज़ों में भी बड़ा इन्वॉल्व करते हैं।
1: डॉक्टर सदफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दोबारा वही हवाला दूंगा कि आपने चीन से डिग्री हासिल की है, तो बताइएगा वहाँ के और यहाँ की टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपको क्या वाज़े फ़र्क नज़र आया, और क्या आप वहाँ की ज़्यादा अप्लाई करते हैं यहाँ, या पाकिस्तानी इंडिजनस से होती है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं?
0: सर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं खुद चाइना गई थी और मैंने अपना कोर्स वर्क स्टार्ट किया था, तो मैं क्योंकि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से वहाँ जाके थोड़ा सा शिफ्ट होना मुश्किल था, क्योंकि उनकी जो सारी एजुकेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और आपने उसको सॉल्व करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, तो क्योंकि अंडरग्रेड लेवल पे इतनी हाई अप्रोच यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन MS प्रोग्राम में हम सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बाकी फैकल्टी मेंबर्स भी, हम केस स्टडीज़ और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बच्चों की स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करने के लिए इसी तरह के जो मेथोडोलॉजी है वो अडॉप्ट करते हैं।
1: बहुत अच्छा, आप तीनों टीचर्स ने बड़े वाज़े अंदाज में अपने पढ़ाने के अंदाज को बयान किया। इसी के साथ मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, हम बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

तन को मटकी की तरह बना लो और इसमें अपने गुरु की, अपने पीर की जो तालीमात हैं, जो ज्ञान है, उनको खुद के अंदर रचा लो, समो लो।

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

तन को मटकी की तरह बना लो और इसमें अपने गुरु की, अपने पीर की जो तालीमात हैं, जो ज्ञान है, उनको खुद के अंदर रचा लो, समो लो।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: हम हैं सबर,
1: हम ही सजा,
0: हम कातिब भी हम दास्तां।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

دا آواز دے دا لاہور دا آواز دے دا یو سی پی نو آو رہی FM 92.6 UCP کی دنیا

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।

0: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं जनाब शौकत बेग साहब से, जो कि बानी ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी हैं एक्यू खान ट्रस्ट हॉस्पिटल के, और हम बात करेंगे जनाब इकबाल नासिर इकबाल खान साहब से भी। सर, बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले हॉस्पिटल के बारे में, माशाल्लाह आपने काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की उसके हवाले से। हम ये जानना चाहेंगे कि ये कितना एरिया कवर करेगा हॉस्पिटल, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। लाइक एक जनरल हॉस्पिटल है
1: जी, जी ये जनरल हॉस्पिटल इसमें तमाम ट्रीटमेंट होगी। मैं फिर एक बार मुझे याद आ जाती है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा उनके साथ, और मेरा और हमारे साथियों का मिल के लगाया हुआ पौधा जिन्होंने हमने अपना खून पसीना दिया है, ठीक है। तो फिर कहूँगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को अल्लाह ताला जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मैं जो आपने बात की, सवाल किया, तो ये जनरल हॉस्पिटल है जहाँ तमाम शोभा जात काम करेंगे और आला तरीन इक्विपमेंट होगा, और इक्विपमेंट हम सारा बाहर से मंगवा रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बात की थी कि वो गरीब लोग जो सोच नहीं सकते कि हम बाहर जाके इलाज करवाएं, बाहर से डॉक्टरों की टीम्स आएंगी, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, यहाँ लोगों को चेकअप करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप होगा। और इसमें हमने 70-30 की रेशो रखी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं 30% उनके लिए होगा, 70% फ्री होगा। फिर ऐसा कोशिश यही है हमारे सारे साथियों की ख्वाहिश सब की यही है कि टोटल 100% फ्री कर दें, लेकिन हॉस्पिटल को चलाना भी होता है, फंड भी इसके लिए चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमने ये रेशो को इस वाले से रखा। जहाँ तक आपने कहा है कि ये कितने एरिया पे मुहित है, इस वक्त जो है 2,00,000 square meters पर इसका एरिया मुहित है, इससे प्लस ही है, ज़्यादा ही है एरिया। और इसके साथ ही हमें जो डोनर्स हैं उन्होंने देखे ना, कहते हैं कि अच्छी नीयत अच्छे इरादे होने चाहिए, मैं सभी से यही कहूँगा, आप मेहनत से लगन से काम करें तो अल्लाह ताला साथ देता है। इसमें अल्लाह ताला ने हमें साथ दिया है, तो हमें अपने हॉस्पिटल के करीब से 5.5 canal तकरीबन जगह हमने डोनेट किया, 5.5 canal जगह, और साथ ही 15 canal जगह और किसी की है, उस पर भी काम हो रहा है कि शायद हमें वो भी 15 canal मिल जाए, तो 20 canal मिल जाएगी, 16 canal जगह। ये 20 canal उस जगह पे है जहाँ पे आप सोच नहीं सकते हैं कि हमें कोई 5 mile या 10 mile जगह मिले, ठीक है ना। ये वो कंजस्टेड एरिया है और गुंजान आबाद इलाका है, और सारी आबादी कच्ची आबादी पे है, फ्रूट मंडी है, लक्कड़ मंडी है, सब्जी मंडी है, लारी अड्डा है, और कच्ची आबादियाँ, वो लोग रहती हैं जो अफोर्ड ही नहीं करते। फिर हमारे हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट वो बैठते हैं जिनकी फीस बाहर को 4,000-5,000 है, और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको दिखाने के, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में आप अपनी सर्विसेज देते हैं। और यहाँ तक है कि लोग कश्मीर से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, सिंध से आते हैं इस इधर वो स्पेशलिस्ट को चेकअप कराने के लिए। तो मैं वो बात कर रहा था कि स्पेशलिस्ट को दूसरों को चाहिए उन इलाकों में भी जाएं, ताकि इतनी दूर से जो लोग आते हैं उनकी सर्विसेज उनके डोर स्टेप पे भी मिलनी चाहिए। हम ये भी ऐसा भी हम प्रोग्राम नेक्स्ट रखना चाहते हैं कि लोगों को जो डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट हैं इनकी टीमों को उन इलाकों में लेके जाएं मंथली बेसिस पे, ताकि उनकी चेकअप या सिलसिला करें। तो हॉस्पिटल जब कि मैं बात कर रहा था, हॉस्पिटल से वाले से बात हो रही थी, हमारा जो डायलिसिस सेंटर है जो हॉस्पिटल का, जो हमने बताया था 2017 में बनाया था, वो पाकिस्तान के आला तरीन डायलिसिस सेंटर में एक है। और आप आके देखेंगे कि इतना इक्विपमेंट जो जदीद तरीन है, और उधर देखने में इतनी आपको सुकून चीज़ें सुकून मिलता है कि पेशेंट जो है ना, एनवायरनमेंट जो कहते हैं ना कि एक अच्छा होना चाहिए, उसमें आके आधा तो वैसे ठीक हो जाता है। तो हमें वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने कहा था, क्योंकि पेशेंट इतने गरीब होते हैं कि वो उनको पिक एंड ड्रॉप भी, और बाज ऐसे होते हैं कि उनको किराया भी देना पड़ता है, कुछ देना भी पड़ता है। डॉक्टर साहब ने कहा, यार ये जो हैं इनको खाना भी दें, इनको चाय पानी जूसेस भी पिलाएं, और इनको ऐसे ट्रीट करें, इनका इलाज करें कि ये महसूस करें कि अपने घर में है। एक बंदा जो झोंपड़ी से कच्चे घर से उठ के आता है और आला तरीन जगह पर उसका इलाज मुआलजा हो रहा हो, एसी चल रहा हो, टीवी लगा हो, और उसका डायलिसिस हो रहा हो, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ दे ये प्रोसेस है। सारे जिस्म का खून बाहर निकलता है मशीन से साफ होके उसके जिस्म

0: उससे आपका हौसला भी बढ़ता है, उससे आपका इस हिम्मत भी बढ़ती है। जब आप जाते हैं, हम जाते हैं, तो पेशेंट दूसरे लोग इस वाले से दवाएं देते हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से आ रही होती है, कुछ उनकी तरफ से आ रही होती, तो हमारे हौसले जवान होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसी हिम्मत की बेस पर हमने ये सोचा है कि हॉस्पिटल के साथ हमने मेडिकल कॉलेज भी बनाना है, जो मेडिकल कॉलेज उसको सपोर्ट करेगा, सिलसिला करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इस चैनल के तवज्जो से आपका ये जो चैनल है यूसीपी का, यूसीपी के भी स्टूडेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और उन्होंने भी जो पीरियड गुजारना होता है, क्योंकि बच्चों को चाहिए कि वो बच्चे जो आके वेलफेयर के काम में हिस्सा लेते हैं और उन्हें हम ओपन देते हैं, ओपन सारे शोबों में काम करने के हवाले से, ताकि वो देखें, उन्हें पता चले किस तरीके से काम होता है, वेलफेयर का काम कैसे किया जाता है। शहजादा चार्ल्स, उसने भी आर्मी में जाके अपनी सर्विसेज दी थी, ट्रेनिंग ली थी। उनके बेटा विलियम, वो भी अफगानिस्तान में कोई 2 साल लगा के गया है। तो इसी तरीके से ये वेलफेयर के काम में या दूसरे काम में, इससे ये होता है कि बच्चों को पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ना है, उनको किस किस्म की मुश्किलात का, किस किस्म के माहौल का सामना करना पड़ता है, और कैसे वेलफेयर के कामों को आप अपने साथ जोड़ेंगे। उससे यकीनन जो राहत मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो एक जो बंदे ने चीज़ सीखी होती है, वो आगे उसके जाके काम आती है। तो इंशाल्लाह ताला इसके तवस्से से हमारा यही पैगाम है कि हमारे साथ जो डॉक्टर इकू खान हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने हमारे साथ मिलकर किया था, तो आप लोगों का साथ इसमें हमें चाहिए होगा, ताकि हमारी भी हिम्मत हौसले जवान हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दे सकें।
1: बिल्कुल जी, हमारे कौमी तराने में भी एक पार्ट है कुव्वत या खुव्वत अवाम, और हम ये समझते हैं कि जब कौम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ती है तो ही तरक्की करती है, तो एक दूसरे का साथ देने से ही बेहतरी आएगी इस मुल्क में जी।
0: इंशाल्लाह
1: मजीद बात करेंगे जनाब शौकत बेग साहब से भी, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं एक्यू खान ट्रस्ट हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। सबसे पहले हमने बात की जनाब शौकत विर्क साहब से, जो कि बानी ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी हैं। अब हम बात करेंगे मोहम्मद नासिर इकबाल खान साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं रिसोर्सेज एंड मीडिया के। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा काम आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, एक इतना बड़ा हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करना इट्स हेल ऑफ अ जॉब, बड़ा मुश्किल एक जॉब है, स्पेशली आजकल जो फाइनेंशियल कंडीशंस चल रही हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे यहाँ चल रही हैं। तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको रिसोर्सेज जनरेट करने में, या लोग ईजिली दे देते हैं फंड्स वगैरह, सपोर्ट करते हैं आपको इसके लिए?
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अर्ज़ करूँ कि दरिया रावी के पहलू में और मीनार पाकिस्तान की आगोश में इंसानियत का एक मीनार खड़ा है, जिसका नाम है डॉक्टर ए क्यू खान हॉस्पिटल ट्रस्ट। तो वो बात होती है कि आपका जुनून, आपका पैशन वो बोलता है, आपका काम बोलता है। और डॉक्टर ए क्यू खान साहब का अपना नाम, उनकी शख्सियत और डॉक्टर शौकत विर्क का जो किरदार है, वो सबसे बड़ा हमारा जो हमारी कह लें एक साख है, हमारी एक हमारा ब्रांड है। और जो हमारा माशा अल्हम्दुलिल्लाह सहाफत के मामले में और सदकात और अतियात के मामले में, सहाफत के मामले में बहुत ज़रखेज़ है। शर्त है कि आपका जो काम है वो प्रैक्टिकली नज़र आए लोगों को। तो हम ख़ास तौर पर माह रमज़ान में कैंपेन करते हैं और लोग दिल खोलकर अपनी ज़कात, सदकात, अतियात देते हैं। और जिस तरह हम एक मुहावरा बोलते हैं, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो वो वाक़ियतन आपको दरिया रावी के पहलू में दरिया जो है, कतरों का दरिया, लोगों के सदकात और अतियात का जो दरिया है, जो समंदर है, वो नज़र आता है। 8 मंजिला इमारत और उस आबादी में जहाँ पे बड़े मतवसत लोग रहते हैं, बड़े मुश्तक और मुफलस लोग रहते हैं, और उनकी जो महरूमियाँ हैं देख के दिल खून के आंसू होता है। और इस शहर में जो मैं समझता हूँ कि माजी में भी सबसे ज़्यादा जो नज़रअंदाज हुआ है हमारा हेल्थ सेक्टर है। बहुत सी हुकूमतें आईं और लेकिन शाहराएँ बनी, पुल बने, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बने। और अगर बने तो वहाँ पे जो एक आम कॉमन मैन है उसकी जो रसाई है वो बड़ी दुश्वार है। तो डॉक्टर शौकत विर्क का ये ख्वाब था जो इन्होंने देखा, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टर ए क्यू खान भी आए और इनके बहुत सारे रुफका आए, कैसर अमीन भट आए, सईद अहमद मलक आए, सुहेल मुगल आए, बहुत सारे दोस्त। इनकी अहलिया ने बड़ा इसमें किरदार अदा किया है, आयशा साहबा ने। तो ये एक टीम वर्क है जिसके रूह रवान डॉक्टर शौकत विर्क साहब हैं। बात यह है कि जब आपकी नियत नेक हो, आपके आपके पास इखलास की दौलत हो, तो आप बड़े बड़े जो है ना कारनामे अंजाम देते हैं। तो ये एक इस मामले में चैरिटी के मामले में ये जो हॉस्पिटल है, इसकी जो इमारत है, वो आप समझ लें कि एक जिंदा सबूत है लोगों के जज्बात का, लोगों के एतमाद का। इन्होंने जब लोगों को हर अंदाज से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया है बड़े जुनून के साथ, और चूंकि ये खुद कलमकार भी हैं, दर्द दिल रखते हैं और लोग इनकी बात सुनते हैं, लोगों तक इनका पैगाम जाता है, ये अमा जहद शख्सियत हैं। हर शोबे में इनकी नज़र होती है, डिज़ाइनिंग में, मीडिया में, जितने भी पहलू हैं, अगर नक्शा बन रहा है हॉस्पिटल का तो वो भी देख रहे हैं। हर शोबे में इन्होंने पूरी तरह दिलचस्पी ली, उसकी नोक पलक की, और पूरी मतलब दिन रात एक, जिस कहते हैं ना खून और पसीना बहाया, दिन रात एक करके इस पर मेहनत से अपने ख्वाब को खुद शुमिंदा ताबीर किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख है और तारीख को कोई झुटला नहीं सकता। आज जिस तरह भी इन्होंने अपनी गुफ्तगु में जिक्र किया मोहसिन पाकिस्तान का, और ये मैं आपके प्रोग्राम की वसात से बताना चलूँ कि इवन डॉक्टर ए क्यू खान साहब को जो मोहसिन पाकिस्तान का जो लकब है, जो खिताब है, वो भी उसके महरक भी डॉक्टर शौकत विर्क है। इन्होंने अपने कॉलम्स में, अपनी तहरीरों में इतनी उस बात को, इतनी उसकी तकरार की, उसको दोहराया कि वो आज जुबान जद आम है मोहसिन पाकिस्तान। तो ये इनकी जो उनके साथ एक नस्बत थी, कुर्बत थी, ताल्लुक था, वो बहुत आगे तक परवान चढ़ा और एक हॉस्पिटल की सूरत में हमारे सामने है। और जो ये डोनर्स की के इज्तम होते थे, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी एक आला ज़र्फ इंसान थे। उन्होंने बहुत सारी तकरीबात में बबांगे दोहल ये एतराफ़ किया, ऐलान किया कि इस सारे कॉज के महरक जो हैं, इस हॉस्पिटल के महरक और बानी डॉक्टर शौकत विर्क हैं, उनका बड़ा काम है, बड़ा किरदार है। और इन्होंने एतराफ़ किया कि मैं इनकी दावत पर इस कॉज से वाबस्ता हुआ हूँ, اصل اس کاز کے روح روان ڈاکٹر شوکت درک ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا پن ہے, ان کی اعلیٰ درفی ہے, ورنہ لوگ اس طرح کے اعترافات نہیں کیا کرتے. تو یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اس کو ایک عملی اور متحرک اور فعال ہاسپٹل, جہاں پہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب سے, پورے پاکستان سے مفلس اور مشتق لوگ آئیں گے, اور فی سبیل اللہ جتنی بھی وہاں پہ سہولیات ہوں گی انشاءاللہ بڑی جدید, مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, وہاں پہ جدید مشینری کا پلان ہے. تو یہ جو طبقہ ہے, جو محروم طبقہ ہے, وہ فی سبیل اللہ ان سہولیات سے مستفید ہوگا. تو میں نے جسے عرض کیا کہ پاکستان کے جو عوام ہیں, جو ان کے اندر یہ جذبہ ہے صلہ رحمی کا, اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا دریا دل بنایا ہے, بڑا سخی بنایا ہے. تو انشاءاللہ یہ اسپتال اپنی کامیابی کے اعتبار سے ایک مثال ہوگا.
0: بالکل جی, اپنی کامیابی کے حوالے سے ایک مثال ضرور ہوگا, اور سب سے بڑی بات کہ جو اس کے ساتھ نام وابستہ ہے اس ہاسپٹل سے, وہی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے. تو ظاہر ہے ہسپتال بھی اس بلندی کو ضرور چھوئے گا انشاءاللہ. مزید بات کریں گے جی اس حوالے سے, اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. हम बात कर रहे हैं जनाब नासिर इकबाल खान साहब से, जो कि डायरेक्टर रिसोर्सेज एंड मीडिया हैं एक्यू खान ट्रस्ट हॉस्पिटल में. सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा हॉस्पिटल माशाल्लाह आप लोग बना रहे हैं, तो इसकी कंप्लीशन कब तक हो सकेगी? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने अभी शौकत साहब ने जिक्र किया कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, तो क्या उस पर भी साथ साथ काम चल रहा है या वो बाद में स्टार्ट होगा इसके?
1: जी, पहले तो इंशाल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है और बाकी जो तज़ीन और रहाइश है वो जारी है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे सर्व कर रहा है इंसानियत के लिए. और जो कॉलेज का ख्वाब है वो भी अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है डॉक्टर शौकत वर्क साहब को. इनका ख्वाब है कि आम जो घराने हैं उनके बच्चे, चूँकि ये ज़ाहिर है एक महंगी तलीम तस्वर की जाती है मेडिकल की, तो ये भी इसी तरह का होगा, एक रिफाई कॉलेज जिसपे आम लोगों के, आम तबकात के, महरूम तबकात के बच्चे, बेटियां, बेटे वहाँ पे तालीम के जेवर से आरास्ता होंगे. तो ये भी मैं समझता हूँ कि इंसानियत की खिदमत है कि ऐसी, और वो वक्त दूर नहीं होगा जब उसी कॉलेज के फारग तहसील डॉक्टर्स वहाँ सर्व करेंगे इसी हॉस्पिटल में इंशाल्लाह.
0: राइट. सर, शौकत साहब का एक और भी ख्वाब था जो उन्होंने शेयर किया कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में भी जाके सर्व करें, तो क्या आपके कॉलेज के पास आउट्स जो हैं उस पर कोई ऐसी आप वो लगाएंगे लिमिटेशन कि वो पहले कुछ अर्सा कम से कम ऐसे एरियाज़ में सर्व करें जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं?
1: डॉक्टर साहब का प्लान यही है जो आपने फरमाया, बिल्कुल ऐसा होगा. और इवन मोबाइल क्लिनिक या मोबाइल हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो मोबाइल हॉस्पिटल हैं वो मुख्तलिफ दूर अफ्तादा देहातों में, पसमानदा बस्तियों में जाएँ और वहाँ पर पूरा दिन वहाँ बिताएँ, कैंप लगाएँ, लोगों को उनका मेडिकल चेकअप हो प्लस उनके मेडिकल टेस्ट हों और फी सबीलिल्लाह उनको अद्वियात वहीं फराम की जाएँ. और इस तरह इसी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर साहब ने इनके एक दीन दस्तरखान के नाम से, दस्तरखान का भी एहतमाम होता है जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर आने वाले लोग भी और जो मुकामी मजदूर हैं, मुफ्लिस लोग हैं, वो दस्तरखान से भी मुस्तफीद होते हैं.
0: ज़बरदस्ती माशाल्लाह, बहुत ही आला एक सेटअप आप लोगों ने बना दिया है जो कि मेरे ख्याल में बहुत लोगों के लिए एक मशवरा होगा. बहुत बड़ी खिदमत आप लोग दे रहे हैं इस दौर में भी. अल्हम्दुलिल्लाह यूसीपी भी इसमें अपना एक हम्बल सा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हम मज़ीद इस पर कंटिन्यू कर रहे हैं. सर, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही. तो मैं चाहूँगा कि शौकत वर्क साहब, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप सर नौजवानों को एक पैगाम जो देना चाहें, वो क्या पैगाम होगा?
2: नौजवानों के हवाले से पैगाम की बात करता हूं, क्योंकि इस वक्त हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो वेलफेयर के हवाले से मैं कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि नौजवानों पर सारी उम्मीद रखी जा रही है. नौजवानों पे उम्मीद रखी जा रही है, वही हमारा मुस्तकबिल है. और आप, मैं इतना अपने नौजवानों पर मुझे फ़ख्र है और मान है कि हर शोबे में और उन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया है. लेकिन हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि नौजवानों के लिए जब ये स्टडी से अपनी फारग होते हैं तो इनको जॉब के मौके फ्राहम किए जाएं, ताकि ये जिस जिस शोबों में हैं, इंजीनियरिंग का शोबा है या मेडिकल का शोबा है या किसी और को भी शोबा है, वहाँ पे अपना भरपूर किरदार अदा कर सके. जब हुकूमत कुछ नहीं करती तो उन्हें देखना पड़ता है, उसके लिए दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है. लेकिन हमें बड़ी उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान भी इसमें अपना किरदार अदा कर रही है पॉजिटिवली. और जहाँ तक ये यूसीपी वाले हैं, इन्होंने भी नौजवानों को जो सही डायरेक्शन दी है या रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए उनका जो शोभा काम कर रहा है, मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है, जिससे नौजवानों को जो यूसीपी की इधर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं वो मायूस नहीं हो रहे. और मैंने ये पॉजिटिव जो किरदार है यूसीपी का, इसे मैं सराहता हूँ, तो इसको भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को, दूसरे इदारों को भी इसको लेना चाहिए, ताकि ये किरदार जो है पूरे पाकिस्तान में फैले. इसे यकीन करो, मुल्क तमीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेगा.
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा मैसेज आपने नौजवानों को दिया. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक नौजवान मुल्क है, हमारी 60% प्लस से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और अगर ये नौजवान अपना किरदार अदा करें इस मुल्क की तरक्की में तो मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेगा इंशाल्लाह. तो इसी मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं. मुलाकात होगी अगले मंगल के रोज़ 3:00 बजे. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, मेरा नाम डॉक्टर करार हैदर है। हमेशा की तरह मैं प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है फैकल्टी आवर। हमारा ताल्लुक फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है जिसके तहत 7 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और आपको मैं आगाह कर चुका हूँ। आज जिस डिपार्टमेंट ने हमारे साथ मौजूद होना है उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी आर लकी टू हैव विद अस 3 फीमेल टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज प्रोग्राम। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्टिसिपेंट। मैम अपने बारे में बताइएगा।
3: जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अस्मा जफर, वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी UCP।
4: अस्सलाम वालेकुम, आई एम अमारा मसूद एंड आई एम वर्किंग इन UCP फ्रॉम 2017 एंड आई हैव डन माय MPhil फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड माय PhD विल बी कंप्लीटेड सून।
5: अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर सदफ अमीन एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
2: जी मोहतरम सामीन, तारुफी कलिमात के बाद हम बढ़ते हैं बाकायदा प्रोग्राम की तरफ। पहला सवाल मेरा डॉक्टर साहिबा आपसे है, आपने डिपार्टमेंट के बारे में मुख्तसरन बताइए।
3: थैंक यू सो मच सर, आई एम डॉक्टर अस्मा जफर, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। आई हैव ज्वाइंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन 2017 एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2015 अंडर द हेड ऑफ फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज। देन दिस फैकल्टी इज कन्वर्टेड इन टू फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 2022। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स विच वी आर गोइंग टू रन अंडर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, currently 4 programs are running: BS biotechnology, MS biotechnology, PhD biotechnology, and recently we have started another MS program which is MS forensic science.
2: Very nice. And now I ask Ms. Amara, aap kis department ke bare mein bataiye?
4: जी थैंक यू डॉक्टर करार। अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट जो बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द लीडिंग डिपार्टमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत एडमिशन है और हमारे BS की क्लासेस 3 सेक्शंस हमारे 150 प्लस तकरीबन स्टूडेंट्स हो जाते हैं। हमारे MS बायोटेक्नोलॉजी और PhD बायोटेक्नोलॉजी की भी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, और अब हमने रिसेंटली MS फोरेंसिक शुरू किया है और उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है। एडमिशन के से MS फोरेंसिक साइंसेज का भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो BS बायोटेक्नोलॉजी और MS बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा फोरेंसिक साइंसेज भी अब बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो रहा है।
2: जी नवाजिश मिस हमारा, अब मैं डॉक्टर सदफ हमीद से पूछूंगा। डॉक्टर साहब आप बताइए अपने डिपार्टमेंट के बारे में मुख्तसरन।
5: बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो एक सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम क्लोजली कनेक्ट है विद इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल ईयर उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, और यही रीज़न है कि इमीडिएटली आफ्टर देयर ग्रेजुएशन दे गेट प्लेसमेंट एट इंडस्ट्रीज।
2: जी बहुत खूब। डॉक्टर आसमा मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि आप अपनी 7 जो कॉलीग्स हैं फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके बारे में कुछ मुख्तसरन बताइए हमें।
3: थैंक यू सो मच सर, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट द वर्किंग एनवायरमेंट। सो आई वुड लाइक टू से दैट एट द UCP आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, और जो सबसे अच्छी बात मुझे UCP की अभी तक लगी है, जो जिसकी वजह से मैंने इतना लॉन्ग स्टे किया है, वो यही है कि यहाँ पे हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो है वो UCP में अपनी कोलीग्स के साथ गुजरता है, घर से ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे गुजारते हैं। तो हमारा बिल्कुल जो एक एनवायरनमेंट है वो फैकल्टी लेवल के ऊपर, डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, तो इसमें कोई, और हमारा जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, हमारे जो वर्किंग सिटिंग प्लेसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इसके अंदर कोई इस तरह का ड्रॉबैक नहीं है, और शायद यही वजह है कि इतना लॉन्ग स्टे जो है हमारे फैकल्टी मेंबर्स यूसीपी के अंदर उनका इतना ज़्यादा ये लॉन्ग स्टे होता है।
2: जी ये सवाल मेरा मिस हमारा आपसे है, फैकल्टी से इंटरेक्शन के बारे में बताइएगा।
4: जी सर, अच्छा हम लोगों के पास बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 9 PhD होल्डर्स हैं माशाल्लाह, और इसके अलावा हमारे 2-3 फैकल्टी मेंबर्स पोस्ट डॉक पोजीशंस पे मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप और बहुत अच्छे दाद स्कॉलरशिप वगैरह पर अब्रॉड गए हुए हैं। कुछ हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं 1-2 जो अमेरिका में जॉब भी कर रहे हैं और वहाँ से हमारे स्टूडेंट्स को टीच भी करते हैं और हमें रिसर्च में भी असिस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी लेक्चरर्स हैं वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छी उनकी रिसर्च प्रोफाइल है, और रिसर्च पब्लिकेशंस में, प्रोजेक्ट्स में, कमर्शलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनका बहुत अच्छा रोल है। तो फैकल्टी माशाल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है।
2: बहुत खूब मैम, अब मैं डॉक्टर सदफ से पूछूंगा क्या उनकी भी यही राय है अपनी फैकल्टी के बारे में, उनकी राय कुछ मुख्तलिफ है।
5: सर मेरी अपनी फैकल्टी के बारे में सेम राय है, और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी क्योंकि जब आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ अ डाइवर्स फील्ड, तो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सम बिलोंग्स टू हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, सम बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, मोलेकुलर बायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो जब भी हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो जब हम इस डाइवर्स बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इससे स्टूडेंट को जो है वो बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है और उन्हें फर्दर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में बहुत हेल्प आउट होती है कि वो हर टीचर से जब पढ़ते हैं जिनकी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है उन्हीं एरिया में, तो ये स्टूडेंट को एक नई न्यू इंसाइट देती हैं।
2: बहुत अच्छा मैम, बड़े वाज़े तरीके से आपने बताया। मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अब वक्फा हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा यूसीपी की दुनिया।

0: डॉक्टर अस्मा से दोबारा सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि बच्चों का एक्सपोजर के लिए क्या आप कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया और इस तरह की चीज़ें करवाते रहते हैं बच्चों को?
1: जी सर, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि अभी आपने पहले सवाल किया है कि हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, तो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर ये भी हम लोग जब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास वर्क, तो उसमें स्टार्ट ये चीज़ एक ज़रूर रखते हैं कि कोई ना कोई एक्सपोजर का जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स का वो ज़रूर हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स कि कोर्स कौन सा है। अगर वो कोई इस तरह का है कि जिसमें कोई सेमिनार जो है वो कंडक्ट करवाया जा सके, कोई वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जा सके, या कुछ इस तरह के कोर्सेज होते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को स्टडी टूर के लिए आउट ऑफ द कैंपस जो है वो लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका एक्सपोजर होता है। तो एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट्स को सिर्फ थेरी दे दी जाए और अगर उनको रियल वर्ल्ड के साथ उस थेरी को लिंक ना किया जाए, तो आई थिंक कि वो उस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको ऑप्ट नहीं कर पाते। तो हमारी ये एक कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है। मेरी जो हमारा जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसको ऑप्ट करते हैं और इसमें जो कॉन्टिन्यूसली जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, आइदर इट इज़ अ स्टडी टूर, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मिस हमारा, जैसे कि डॉक्टर अस्मा ने बताया, इसका मतलब आप अपने स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ आगाह करते हैं और उनको उनके बारे में बताते हैं। मजीद रोशनी डालिएगा।
2: अच्छा सर, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि यूसीपी का जो ये बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये ना सिर्फ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लीडिंग डिपार्टमेंट है, बल्कि रिसर्च पब्लिकेशंस के हवाले से भी हमारा डिपार्टमेंट लीड पर है। और तो उसमें सर ये है कि हम रूटीन में अपने फैकल्टी मेम्बर से भी और गेस्ट स्पीकर से भी हम उनको कहते हैं कि आपने जो इतने अच्छे स्किल्स सीखे हैं वो प्लीज़ हमें सेमिनार्स दें, हमें बताएं। इसके अलावा सर, अभी हाल ही में हमने एक अलमनाय सीरीज शुरू की है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे, दाद स्कॉलरशिप पे बाहर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, हम उनको खसूसी बुलाते हैं और अपने जो अब बीएस के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें कहते हैं कि आप इनको गाइड करें ताकि ये कि ये भी बाहर जाकर मजीद कर सकें,
0: मोटिवेट भी।
2: बिल्कुल सर ऐसा ही है। इसके अलावा सर, हम इंटर्नशिप पे सारे बहुत अच्छी अच्छी सेक्टर्स में बच्चों को प्लेस करवाते हैं। हम सर अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं, डीएनए डे सेलिब्रेट करते हैं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका बायोइनफॉर्मेटिक्स को लेके बहुत अच्छा मॉडल कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन करवाते हैं जो कि हम पिछले 7 ईयर्स से रूटीन में बड़ा करवा रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर हम बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा सर, इंडस्ट्री में बड़ी अच्छी हम प्लेसमेंट्स करवाते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को हम बुलाते हैं कि फाइनल सेमेस्टर में आकर हमारे बच्चों को प्लेस करें, जैसे जॉब फेयर के लिए। जैसे सर एक वो बड़ी मूवी में तारे जमीन पर वो मूवी है जिसमें उन्होंने ये किया है, तो हमने बिल्कुल उसी से मोटिवेशन ली और हमारे इस साल जो बच्चे हैं कोई 10 बच्चे तकरीबन उन्होंने इंडस्ट्रीज में प्लेस करवाए हैं।
0: डॉक्टर साहब मैं फिर दोबारा आपका हवाला दूंगा, जाहिर है आपकी पीएचडी चाइना से है। हमें ये बताइएगा कि क्या आपने वहाँ जो लोगों से रवाबत कायम किए तालीमी और रिसर्च के बारे में, क्या आपने उसका समर जो है वो यूसीपी के बच्चों तक पहुंचाया?
3: जी सर, इसमें यह है कि क्योंकि मेरे सुपरवाइज़र हैं या जो मेरे कुलीग्स हैं उनमें से बहुत से कुलीग्स जो हैं वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जैसे एमआईटी के अंदर है, स्टैनफोर्ड में है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की एक कॉन्फ्रेंस जो जूम मीटिंग है वो उनके साथ अरेंज करूँ और उन्हीं का कोई एक पेपर बच्चों को रीड करने के लिए देती हूँ और आई आस्क देम कि वो उनसे ही क्वेश्चन पूछें कि उन्होंने ये काम कैसे किया और उसमें उन्होंने किस तरह की हर्डल फेस की है। तो ये है कि हम इस तरह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो अपना यूज़ करते हैं यूसीपी में।
0: माशाल्लाह ये ही वजह है ना कि बायोटेक्नोलॉजी यू नो इज प्रोग्रेसिंग विद एवरी पासिंग डे। सो हैट्स ऑफ टू यू, योर पर्सनल एफर्ट्स, योर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, योर कंसर्टेड एफर्ट्स, आई विल पुट इट लाइक दैट। तो आपसे डॉक्टर अस्मा दोबारा एक सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि व्हाई बायोटेक्नोलॉजी ऑफ यूसीपी when there are so many other class institutions existing in Lahore, why UCP and why biotechnology? क्यों?
1: जी सर, इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ यूसीपी एज वेल एज एफओएसटी, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं इसमें देखती हूँ कि हमारी जो रिसर्च हैं रिसर्च लैब्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि यूसीपी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट. और मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ कि इफ़ दे वांट टू

0: टू देयर स्टडीज फॉर एम एस एंड पी एच डी, तो उनको यूसीपी से ही करना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे पास जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस वक्त जो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा एडवांस हैं. हमारे पास जो फैकल्टी है उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं प्रेफर करती हूँ कि जो हमारा यूसीपी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू अदर बायोटेक्नोलॉजी.
1: आप कभी ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज या जहाँ कहीं बहुत बड़े बड़े आलिम उलमा बैठे हो ना, तो हम जैसे लोग कहीं छुप से जाते हैं. मुझे लगता है कि यूसीपी में रहते हुए मैं बड़ा अच्छा एक इन्फ्लुएंस, यानी मैं बड़ा अच्छा एडिशन कुछ कर सकती हूँ स्टूडेंट्स की करेक्टर बिल्डिंग में. और ये, और सर मुझे यहाँ प्रोग्रेस करने का मौका मिल रहा है. मुझे 8 साल यूसीपी में हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूसीपी का इन्फीरियर स्ट्रक्चर और हमारी बायोटेक की लैब्स बेहतरीन है. हमारे HOD साहब, हमारे प्रोरेक्टर साहब बहुत अच्छे से, हमारी डीन साहिबा हमें फैसिलिटेट करती हैं. और सर स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए सर हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ फंडिंग के हालात भी हमारे सामने हैं. इससे मैं अगर मुकाबला करूँ यूसीपी का, तो मुझे लगता है कि बनिस्बत हमारी लैब्स में हमारे BS के बच्चे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट लैब काम कर रहे हैं और हम उनको रिसर्च पब्लिकेशंस, हमारा BS का बच्चा रिसर्च पब्लिकेशन निकाल रहा है. तो मैं समझती हूँ कि ये एक फैकल्टी लेवल पर भी और डिपार्टमेंट लेवल पर भी ये हमारी एक बड़ी प्रोग्रेस और बड़ी बात है कि हम ये कर रहे हैं.
2: जैसे कि दोनों मैम्स ने बताया, पहले डॉक्टर आसमा ने फिर मिस अमारा ने, कि मुझे याद आ गया ताहिरा सईद का एक गाना कि हम सब हो तो सामने आए. तो वाकई बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ लगती है. मुझे यही बात मैं डॉक्टर सदफ हमीद से पूछूंगा. डॉक्टर साहिबा, व्हाई यूसीपी, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट योर डिपार्टमेंट?
3: सर इसका आंसर मैं आपको टू पार्ट्स में दूंगी. एक तो लाइक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो बायोटेक जो है वो एक इस तरह की फील्ड है जिसमें एट द एंड बच्चों के पास कुछ ना कोई बायोटेक प्रोडक्ट होता है. हमारा जो डिपार्टमेंट है वो तखलीक इंक्यूबेशन सेंटर के साथ क्लोजली कोलैबोरेट कर रहा है. तो उसमें तखलीक का जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो बायोटेक के बच्चों को उनकी प्रोडक्ट डिवेलपमेंट से लेकर उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तक जो है वो उनको गाइड करता है प्रॉपरली, और उनको लाइक जो भी गाइडेंस चाहिए होती है वो हम उनको देते हैं. दूसरा ये कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने यहाँ से ग्रेजुएट किया और उसके बाद लाइक हम आपको गाइड नहीं करते हैं. हाँ, इवन अगर स्टूडेंट्स को जो है वो फर्दर गाइडेंस चाहिए, वो किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. तो सर ये कुछ अच्छी बातें हैं जो UCP के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हैं.
2: बिल्कुल, और जो तलबा और तालिबात को मजबूर करती हैं कि वो आएं और यहाँ दाखिला लें. चलें जी, हम आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं मैम. डॉक्टर आसमा से दोबारा शुरू करते हैं कि ये बताइएगा कि आपके जो बच्चे यहाँ से फारगुल तहसील होके जाते हैं, आप उनको, तीनों मैम से पूछूंगा बारी बारी, आप उनको क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था शुरू में UCP में, मैंने सादी का एक शेर इस्तेमाल किया था फारसी का, कि शादी का खेर है जिसका तर्जमा उर्दू में ये है कि खुशबू वो है जो अपना पता खुद बताए, ना कि बेचने वाले अत्तार को बताना पड़े मेरे पास फलां खुशबू है. मैंने तो ये कहा था कि मैं अपने बच्चों को वो खुशबू UCP की उनमें इनकलकेट करता हूँ. आपकी क्या राय है, आप ऐसी क्या चीज़ उनमें उजागर करते हैं ताकि जहाँ भी जाएँ वो UCP का नाम रोशन करें?
0: जी सर, जैसे पहले भी मिस अमारा ने बताया है कि हम लोग क्लासरूम में तो एक जो कोर्स वर्क है वो तो करवाते ही हैं, लेकिन हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स की जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको एनहांस करें. और ये एक बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट्स का हमारे साथ इंटरेक्शन. अगर हम BS की बात करते हैं तो 4 साल का एक पीरियड होता है. तो आई थिंक कि अगर वो टीचर्स को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, अगर हम टीचर्स अपने आप को इस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि वो मॉरल वैल्यूज़ हमें उनको मुँह से ना बतानी पड़े
2: रोल
0: मॉडल के तौर पर, तो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर जाते हुए उनके अंदर वो चीज़ें मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि वो चीज़ें इंटीग्रेट हो चुकी होती हैं और वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी उसको कंटिन्यू करते हैं.
2: जी, मिस्टर वारा, ये सवाल आपसे.
1: सर मेरा वैसे इसमें ये मानना है कि एक वालिदैन और एक दूसरा जो उस्ताद है, ये दो लोग हैं जो बच्चों को अपने से आगे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
2: रूहानी वालिदैन है,
1: रूहानी वालिदैन है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर मैं तो जो बच्चों को मैसेज भी देती हूँ वो ये है कि मेहनत करें सर, शॉर्टकट कोई भी नहीं है, हर चीज़ के लिए आपने मेहनत करनी ही है। जितनी मेहनत आप करेंगे वो चीज़, और हम बच्चों को इस चीज़ का आदि भी बनाते हैं कि आप प्लीज़ किसी शॉर्टकट और इन चीज़ों की तरफ मत देखें, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, सिंपलिसिटी के साथ आप वो करें तो सर ज़िंदगी तो है ही बड़ी खूबसूरत, और इसी चीज़ को आगे ले कर चलें तो सारे रस्ते आपके हैं। सर अल्लाह ताला हर एक के लिए दर तो ज़रूर खोलते हैं, वो रहमान है सर।
2: डॉक्टर सदफ, आखिर में यही सवाल आपसे मुख्तसरन जवाब दीजिएगा।
3: सर मैं अपने स्टूडेंट को जो बात बताती हूँ ये कि दे हैव द पोटेंशियल, दे जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट। पाकिस्तान में जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जॉब मिलती है नहीं मिलती है, तो उसमें बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि दे हैव द पोटेंशियल, वो कुछ भी कर सकते हैं और सिर्फ उन्होंने जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करनी है।
2: बहुत खूब, डॉक्टर साहब ने तो रूमी के कॉल को अपने अल्फाज में बयान कर दिया कि असल में ज़िंदगी जो है ना दुनिया, वो आपके अंदर आबाद है, आपने अंदर नज़र दौड़ानी है, उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, फिर अल्लाह ताला आपको पर फराहम कर देता है। इसी पॉजिटिव नोट पे आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। मैं अपनी तीनों मेहमानान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि डॉक्टर असमा आपका, मिस हमारा आपका, डॉक्टर सदफ हमीद आपका, आप तशरीफ लाएं और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। आइंदा भी हम इसी प्रोग्राम को लेकर हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा, यूसीपी की दुनिया से हम मुखातिब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया। मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।
2: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
3: Are you tired of feeling

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

دا آواز دے دا لاہور دا آواز دے دا یو سی پی نو آو رہی FM 92.6 UCP کی دنیا

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

इस सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: Ek naya andaaz.
2: Ek nayi soch.
1: Ek nayi pehchan.
2: Ek nayi lagan.
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को